0: पोखराको पर्यटन क्षेत्र अहिले चलायमान बनेको छ। मध्यपूर्वको तनावका कारण तेस्रो मुलुकबाट पर्यटन आगमन घटे पनि छिमेकी मुलुक भारतीय पर्यटकका कारण पोखरा र यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको हो। पोखरामा यस वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै भारतीय पर्यटक घुम्न आएका छन्। पर्यटकका कारण पोखरादेखि मुस्ताङसम्मको पर्यटकीय गन्तव्यहरू भरिभराव हुने गरेको छ। भारतका विभिन्न शहरमा बढ्दो गर्मीबाट राहत खोज्दै नेपाली पहाडी गन्तव्यतर्फ पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा देखिएको हो, जहाँ पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय पर्यटकको बाक्लो उपस्थितिले पर्यटन बजार फेरि एकपटक चलायमान बनेको छ। होटल रेस्टुरेन्टदेखि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा उत्साह थपिएको छ। भारतीय सरकारले समेत छिमेकी देशमा भ्रमणका लागि आफ्ना नागरिकलाई प्रोत्साहित गरेको छ। भारतीय पर्यटकले पोखरा शीतल भएको र यहाँको सुन्दरताले आफूहरू लोभिएको बताउने गरेका छन्। नेपाल र भारत बीच धार्मिक हिसाबले समेत एकरूपता रहेकाले धार्मिक पर्यटक समेत आकर्षित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
1: हम गुजरात से आए भावनगर और ये नेपाल के लोग है अच्छे। यहाँ से 5 दिन हो गए, आज निकलने वाले हैं। साथ में हमारा 20 का ग्रुप है, 12 लेडीज है, 6 जेंट्स है।
2: कहाँ कहाँ घूमे आए?
1: काठमांडू आए, यहाँ पोखरा देखा है, अयोध्या सब देखे है। लेकिन यहाँ का सिटी अच्छा है,
2: यहाँ का खास मौसम हो रहे थे,
1: मौसम बहुत अच्छा है, पानी बहुत शुद्ध है।
3: घूम रहे हैं अभी तो, निकले हैं अभी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगा। बहुत जब उसमें घुसे हैं, कौन सा जगह है, अरे पोखरा ना, तो उसी में तभी से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ वहाड़ देख के और मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताएं। जो इंडिया तो मतलब है, लेकिन इधर का जो खूबसूरती है वो इधर नहीं है, इंडिया में नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है। और जब उसमें से धुआं जैसे बादल का वो उठ रहा था, वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी, हर जगह जगह जगह पानी गिर रहा था, वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ठीक लगने लगा। बहुत अच्छा लगा। अभी तो घूमना है, अब निकले हैं घूमने के लिए।
4: कितना धूप है?
3: बहुत तेज धूप है, एकदम जैसे लग रहा है सूरज एकदम नीचे आ गया, इस तरह से तप रहा है वहाँ। वहाँ बारिश होने के बावजूद भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। और यहाँ यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मौसम ही बदला हुआ है यहाँ का।
5: आए हैं और हमें काफी यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम काफी अच्छा है। मेरे वहाँ तो काफी ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन हम लोग को यहाँ आके कल शाम को यहाँ पोखरा लेक के पास हम लोग आए, तो यहाँ बारिश का आनंद लिए और मौसम काफी सुहावना रहा, बहुत अच्छा लगा। और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी आए घूमें, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी है, मार्केट भी बहुत अच्छा है। शाम का यहाँ जो मार्केट है, नाइट लाइफ काफी अच्छा है, आप लोग भी आ सकते हैं।
0: पर्यटन का लागि जेठदेखि साउन महिनालाई अफ सिजन मानिन्छ, तर यही अफ सिजनमा समेत उल्लेख्य पर्यटक आगमन हुँदा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समय पोखराको होटलको अकुपेन्सी 90% पुगेको छ। पर्यटकलाई होटलमा कोठा पाउन समेत मुस्किल हुने गरेको छ। पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष हरि भुजेलले पोखराको धेरै प्रवर्धन भएका कारणले पर्यटक आगमन बढेको बताउनुहुन्छ।
6: अहिले पोखरामा भारतीय पर्यटकहरू जुन हामीले कल्पना गरेका छौँ, अपेक्षा गरेका छौँ, त्यो अनुसार भारतीय पर्यटकहरू एकदम धेरै आइदिनु भएको छ। पक्कै पनि यसको